सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वडभाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपतासे। मेरे संग

हर सच्चे सृजन हार सब जियत मारे जी तू जिया का दातार हर त्यावह संत

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह तद जी जन नानक तिन कुर्बान।

पूर्ण सबराता किल बख सकल देह को हरता किल बिख देह सकल देह को हरता दुष्ट दोखण को शय करता श्री

क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए।

फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संकीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन के रा।

कच्चह कंचन पयो शब्द गुर सर्वनय सुनयो बिखते अमृत हुयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहण माणिक करे ज्ञान गुर कहयो विचारे पाठों श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया

प्रभु कै सिमरन सब किश सुजाय, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से धन बनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते।

सबत उत्तम हर की कथा राम सुनत दर्दुख लत्था नाम की महिमा संत तपस्या संत प्रताप दुर्त सबनसा संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शबर ना होए नान गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सेमृति पेखे सर्व टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सेमृत वखियान योग अभ्यास

जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक गबरना जान सकुए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मिल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत।

ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर दान ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का

나는 소년 사다 아루 요만드고 담에 담만 때문 그러가 샤브도 만해야 담만 조바 간나브 차르타라 프라니 그러 차르락 드네스타라 존드가 디파게 브르가스 그러 다르천 데크만 호에 비가스 जो महाउद्यान में मार्ग पावित साधु संग मिल जोत प्रगटावे तन संतन की बांछो दूर नानक की हर लुछाबूर मन मूर्ख का इबर लाइए प्रभु लिखे का लिखया पाइये दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जोगश करे सोई सुख मान भूला कहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे रास लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पात सेती कर जाहे

ऊचा नीचा तस्किया स्थान जैसा जनाब है तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग, नाना विद किन्नो विस्तार पर विनाशी एक अंकार, नाना चलत करे खिन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बंत मनाई अपनी कीमत आवे, भाई सब कट तिसके सब तिसके ठाऊ, जब जब जीवे नान घर नाऊ, नाम के तारे सगरे जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाता, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भम, नाम के समुद्रे सुन श्रवण कर कृपा सपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सूजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास, सत नान गुर ते पाई, सत भजन साधु उपदेश, सत जन जाका हृदय प्रवेश, सत अंदर तुझे जय कोय नाम जब तागी गत हो, आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिट सो करने हार बना बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत स्वभाव है सुवरतिया, बिस्मन बिस्म भाई बिस्माद, जिन पुजा आया स्वाद, प्रभु के रंग राज रहे गुर के वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हा जाके संग तुरा संसार, जन का सेवक सो बड़ भागी, जन का संग एक लिब लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावह गुर प्रसाद, नानक फल पावे सरोक, आद सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी भे सच अष्टपदी, चरण सत सत प्रसन्न।

के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर का सेवक जन संग प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक प्रपालन हारा सेवकी राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक, सो सेवक सा सा समार। अपने जन का प्रदा ढके अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदमिंद को ना लाखे, प्रभु के सेवक को ना बहुचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक, सो सेवक दैत सु प्रगटाया। निखी कीरे मैकल राखे भस्म कराए, लसकर कोट लाखे, जिसका साधना काटते आपदा को राख देख रहात। मान जतन करत बापान, जिसके करत बिरथे जात। मारे ना राखे वरना कोई सर्व जिया का राखा, सोहे काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ लख विडाणी। बार बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन, जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रह, जो जंत्र बताने मंत्र नामे नाम समाने। उठत बैठ सुभत नाम कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ ने जन किन्नी दात। करे भगतात्म कह चाहे प्रभ ने सिंह रहे, समाए जो हो वह हो सो जाने, प्रभ ने का हुक्म।

की मन करे ना पाए। आनक भगत बंधन करहे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सतगुर परे नानक, जिस प्रसाद है साबर जपने। ए हर रस पावे जन गोय, अमृत पीवे अमृत सोहे, इस प्रकार नाही कदे बिना जागे, मन प्रगटे गुंथास। आठ वैरर का नाम ले, सजब दे सेवक, देव माया के संगना लेव, मन में राखे हर रेख। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरमो दुख तैते दासे, तपत माए ठांड बरताई, अनंत ब्यातु मराठे पाई। जन्म मरण के मिटिया देसे, साधु के पूर्ण देसे, भावजू का निर्भय बसे, सकल ब्याद मंते खै नसे। जिसका सा दिन कृपा तारी, सत्संग जप नाम मुरारी, तित पाई चुके ब्रह्म गमन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। अरबिंद दूजा नाई गोए, सर्व निरंतर एको सोयोद, बोध रव्या रूप रंग भय बरगा, साध गय संग रच रचना, अपनी गल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चल बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक धन सार अष्टपति। संजना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, उर पाप समीत विसारो, चरण कमल हृदय में उरतारो, करण काल सो परब समराथ, दृढ़ कर गह हो, नाम अलवाते तन संचो हव भगवंत, संजना कर बलवंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार गुण उठता में, सो तन हर सेवा ते पामे, जिस सुख को नित बांछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे बल गिरनी, सा शोभा बज हर की सरणी, अनुग पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखदलाय, सर्व निधान में हर नाम निधान, जब नानक दरगे परमान।

होता। जब तारी अपन सुन समाद तैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिन्ह जब तब हर सो कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपार बनत मोह कांग सोभत भ्रम, अपन खेला वरतीजा नान करने हार न दूजा। जब होत प्रभ केवल धनी त बंद मुगत कहो किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जोत धर तब कम ने डर कवन कत डराए। अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कह बिना संजय पूर्ण करता प्रभ सोए। तब जम की तरक त्रास कह हो कि सोहे, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।

मधुपुरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परमानंदर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत ने।

आप छोड़ बेनती करहो, सा संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सा संग पाज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो।

निरंकार असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य ताप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदात असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूर मोह।

हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे।

प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चर्पण शांत वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलाह कर्मं सर्वं दाता सर्वं।

अनास है, उदास है, तंद है, बद है, भगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, नितिंत है, सुनित है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशांत वे प्रसाद,

पिंग तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सिकूदत पावन के गौन कव जात निवारे पारी पजान के पहु पलि बेदन आवत सीस न जात विचारे एते पाए तो कहा पाए पूवत अंत कौ नागहि पाए पधारे।

एक दूजे किसी भी नहीं लाई, दूजे ने क्या आख्या मलेश ए नहीं आ सकता, वह कहते काफर ए नहीं आ सकता। क्या इत सब एक इत कोई आवे उत हंस बाग दुबदा ना मेट सके, इत दुरमत गुरमत समझा आवी, इथे दुरमत ही है भी आवे दुरमत कट के उन गुरमत दे के कहते आ सजना तेनू हंस बना दिए। बगला तो चिट्टा है उन्होंने हंस बना सौखा है, साहब जी कहते

भावतिना सुबार से सुख कर पसाओ दुख विचार से सहसा मूल नाहे सर प्रचार से तिना मिलिया गुरियाए जन को लिखिया मृतर का नाम देवे दिखिया चल सगुरु पाए पवे न पिखिया जाको मैल हजूर दुर्जन में कैस दर दरवाणी नाहे मूल पुछ तिस छुटे तक बोल साहिब नजर जिस कल्याण आप जिस नाही दूजा मत कोई टाय सारे सा जन सब सोए नाओ नानक बसीस नजरी का।

0: नाम है पकड़ो सो खड़े सब कलगा धर्म राय से डंड लगाना पेरे पजताना हाथ
1: संत देह सुख पावे प्रभु लोच तुम समर्थ पुरख बड़े प्रभु स्वामी मोको की जदान जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम सोही महला चौथा

हर जन अरोग भय गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके होमै रोग गए। रहाओ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच होमै कर कमाई जिन की है तिसे न चित है बौपड़ै हर गुरमुख सोजी पाई। होमै रोग सब जगत व्यापिया तिनको जन मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटै जिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आप वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म विचारो। सूही महला चौथा कीता करना सर्व रजाई किश कीचै जे कर सकिया अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखिया।

भिखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किस नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकर अगमा पारे। क्या सेवक मावो क्या कर रिजावो बिद

साध जना का दर्शन डीठा। सब हूं ना समझे अज्ञान गवारा, बहोर बहोर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिखै नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजै, कर कृपा मोह साध संग दीजै। तौ किस पाईऐ जो होइऐ रेना, जिसे बुझाए तिस नाम लेना। रहाओ सूही महला पंजवा, घर मह ठाकर नदर ना आवै। कल मह पाहण लै लटकावै, पर मैं भूला साकत फिरता। नीर बरोलै खप खप मरता। रहाओ जिस

विरले काहू नेत्र हो डिठी रहाओ तह गीत नाद या खारे संगा उहा संत करे हर रंगा तह मरन ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोहज कथा एह गुरते जानी नानक बोला हर हर बाणी सूही महला पंजवा जाकै दर्श पाप कोट उतारे पेट तसंग एह पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम को हर नाम रचितारे रहाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी टहल जमदूत बजारे जाकी तीर्थ इस मने सधारे जाकै सिमरन मुख ओ उजलारे प्रभ कै सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रह न पावै सुर न देवा ऊठ सधारै कर मुन जन सेवा जीवत पेखै जिन हर हर त्याया साध संग जिनी दर्शन पाया करहाओ बाद सहा सहा वपारी वरना जो दिसै सो कल है खरना कूड़ै मोह लपट लपटाना मोह चलिया छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा घट घट अंतर तुम रह बसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण आधारे तुम ही पेख पेख मन बिगसारे रहाओ अनेक जोन परम परम परम हारे ओट गही अवसाद।

संत बिनाहे उपारा दूसर हुआ ना को होई जप नानक प्रभे को सोई। सोही महला पंजवा सिमर सिमर ता को हो जीवा चरण कमल तेरे तोहे तोहे पीवा। सो हर मेरा अंतर जामी भगत जना के।

दाता प्रभ अंतरजामी काची दे मनुख अभिमानी स्वाद बाद ईर्ख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग

निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही। पेखत चाखत कहिए तंदा सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त को जाने पूरे दूर है पापी पाप कमाही। सो किश कर जिद छूट है परानी हर हर नाम जप अमृत बानी। रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु न जाता। रंग है रख है पोचार माटी का भांडा अत कुचील मिले जंपा डांडा। काम क्रोध लोभ मोह बाधा वहां गर्त मह निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जय दूबत पहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा जीवत मरे बूझै प्रभ सोए जिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इं दुरत तुरियै सुन साजन इं दुतर तुरियै मिल साधु हर नाम उचरियै। रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर ब्रह्म पछान पार ब्रह्म पछाने। जो किश करे सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने। कहो नानक जिस जन बलिहारी जाके हृदय वसे मुरारी। सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल श्रेष्ठ को दे आधार। गुर कै चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तंत जाए। रहाओ पवजल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत। सतगुर की रेण वटभागी पावै नानक गुर को सद बल जावै। सूही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही। जन्म जन्म कै किल जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला। सूही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। एह बनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे। रहाओ अपनी शरण राखो प्रभ दाते गुर प्रसाद किन विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा मीत साजन संत सत बंध पाई सतकत पेखो हर संग सहाई। जत मेरी पतव मेरी तन हर नाम सुख सुख सहज आनंद विश्राम। रहाओ पार ब्रह्म जप पहर सनाहा कोट आवद तिस बेदत नाहा। हर चरण सरण गढ़ कोट हमारे काल कंटक जप तिस ना बिदारे। नानक दास सदा बलिहारी सेवक जंत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद मंगल सुखताहा। चल सखिय प्रभ रावण जाहा साध जना की चरणी पाहा। रहाओ कर बेनती जन धूर बछाहा जन्म जन्म कह किल विखलाहा। मन तन प्राण जियो अप अरपाहा हर हर हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा। दीन दयाल करो उत्साह नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल रिद महन वासा।

अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावहो। रहाओ अमृत नाम पहुंचो मन माही, अचरज साध ताके बरनै ना जाही। लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। जन्म जन्म के पह मोह निवारे, नानक दास प्रभ कृपा धारे। सुही महला पंजवा, अनेक उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा बिकराला, खिन मह दूर किया दयाला। सोग रोग बिबत अतर भारी, दूर पई जप नाम मरारी। दृष्ट धार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरनाए। सुई महला पंजवा, दीन छिडाए दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए, जो तिस भावै सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए। दीन कह तो सह दुनी न जाए, सर्ब निरंतर एको जागै। जित जित लाया तित तित को लागै, अगम गोचर सच साहिब मेरा। नानक बोलै बुलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी। ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम। पूर्ण होवै मन कै काम, रहाओ

तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगै साहेब तुठै पावा सूही महला पंजमा विसर नाही मिजत तू कमहू सो थान तेरा कहा आठ पहर जित तुद त्याई निर्मल होवै देहार मेरे राम हाओ सो थान पालने आया खोजित खोजित भया सार संग तिन सर नाई पाया रहाओ वेद पढ़ै पढ़ ब्रह्म हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद फिर है बिल्ला तै ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरतै महादेव अवधूता तिन भी अंत न पायो तेरा लाए थके बभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सूही महला पंजवा कर्म धर्म पखंड जो दिसै जिन तिन जम जगाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै

कर चवरत लावा चरण तूड़ मुख लाई रहाओ जन्म मरण दुहू मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सचे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिस किस तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन कै पीसन पीस कमावा नानक की प्रभ पास बिनंती तेरे जन देखन पावा सुही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण धूड़ तेरी सेवक मांगा तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रही है तुद भावै ता नाम जपावा है सुख तेरा दिता लइया रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिसनू आप कराए है जहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमा तुमरा द्वारे पा आया नानको प्रभ आपे कृपाए कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महायनंदा जिस विसरै सो मर जाए दयाल होवै जिस ऊपर करतै सो तुद सदा त्याए मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने अगै

अमृत बचन हृदय और तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पहे सारी तुद जेवड़ अवर न कोई जिसनु लाए लह सो लागै भगत तुहारा सोई दोय कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठै पावा सास सास नानक अराधे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसकै सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावा है बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवै मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पौ किस नाही जम नहीं आवै नेरे रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ध्यान सुख फुल पायन आठ पहरे आराधा तेरी शरण तेरे प्रवास है पंच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया राखो राखण हारे जे तू लव है तित हम लग है क्या इह जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी कर कृपा गुरदेव दयाला गुर गावा नित स्वामी रहाओ आठ पहर प्रभ अपना त्याई गुर प्रसाद पौ तरिया आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्यायो मरिया सफल जन्म तिसका जग पीतर साध संग नाउ जापै सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रभ आपै दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला राग सूही अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तू वसह मन मह सहज रस रस मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रगेतड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चल है गुण नाल नाही दुख संतापना।

से भाई से सजना जो सचा सेवन अवगण विकण पलहराना गुण की सांझ कराना गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करैन सच वणंज है गुर शब्द जो लागा नाम लैन सोयना रूपा पाप कर कर सचिया चले न चलदिया नाल विण नावे नाल न चलसी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदे राखो संभाल एहो खर्चिया खूट है गुरमुख निभ नाल एह मन मूलों भूलिया जासै पत गवाए एह जगत मोह दूजै व्यापिया गुरमति सच त्याए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण न जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर स्यों रह समाए सो सह मेरा रंगला रंगे सह सुभाए कामण रंग ता चढ़े जा फिर कै अंक समाए चिड़ी बछुनी भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नानिद नाम है खान खर्चन ना गिनखुटी हर गुण सह जरवान ना हो जन्म ना मरै ना हो दुख सहन गुर राख से उबरे हरस्यों केल करान सज्जन मिले न विछड़ जे अंधन मिले रहन इस जग मह विरले जाई है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिले जाए गुर कै शब्द भ्रम कटिय अचेत वसै मन आए।